तैसे थेनी गदे दा अगुवाई लला परमेश्वर दा यहोशू दा निर्देशन गदे थे बांगमा दिन साहसी ताबला लागिरी मुबा यहोशू एक अधै ला सात बांगमा दिन लानन साहसी हिनबा नाला दास मोसासी एदा आज्ञा लबा अनुसार बेनन व्यवस्था पालन लौ थेग्याम दाइनी क्यार वा देब्रे क्यार अछङ्ग लौ थेन्दे ए ने ए जे नोन निसै नोन सफल तायाङला परमेश्वर से चुदा नहीं छ पटक एन थेन निर्देशन दुर्लभ लजुजी जब परमेश्वर से गन्दा तिराम तिगै लबरी सेमुला यङसे अवश्य न्यान्दोला जब परमेश्वर से थे सन्देश दुर्लभ लसुला चुला अर्थ यङसे थेरी विशेष ध्यान पिनबरी आवश्यक मुला यौसु एक अधेला नौ एदाङल आज्ञा मुला बाङमदेन काङ साहसी हिनबा आलुङ्गो निरस थताउ तिग्दविषम ए हनाङ निसै नुन परम प्रभु एला परमेश्वर एला छ्याम्री तासुला जब परमेश्वर जे सोमसा पटक हाजिबे तामला बारिदी पङ्सु मुला याङसे रु तिग विशुबा मुला बिबा तामली साचिन ध्यान पिनबरी आवश्यक मुला थेन्दे परमेश्वर चुदा सोमसा पटक एन बाङमा देन साहसी ताबरी सुङ्जी याङला साहस हाइमा ग्याम हामुला चु याङला लडाई छेबरी परमेश्वर देन मुसुला विवाताम सेवा ग्याम हामुला एसैया 41:10 थेरङ्गसी थगलागो तिग्दविषम न एदेन मुला निरासित थगलागो तिग्दविषम ना एला परमेश्वर हिनबा ना एदा बाङमा सोला नला धार्मिक तला दाइने यासे ना एदा सम्भावला रङला मङ देन वास्तविक तिरी परिणत तब च्याब्ला लागि आवश्यक तब कठिन गे गदे लबरी थगलासुगो बेनन भन्दा गेन असफलता तब हामुला जब याङ तिगै आलासिला छनोडला बेनन भन्दा जब नतिजा सामान्यतया बेनन भन्दा कठिन आरोहण लिच्छ हामुला थेन्दे जब याङ याङला लक्ष्यले दोब्रे सफल असफलता

0: प्रतिज्ञा लस्युबा सारी बोर्जी थेन्दे परमेश्वर जे प्रतिज्ञा लस्युबा राङमन थेनी गदेता सफलता पिनबरी गी लिप्सा अर्को चमत्कार लस्युजी परमेश्वर से राङदा राङला मङ छोना लामा क्षमता एन पिन्छुजी लोङबा देन साहसी तस्युगो चु सेगो कि जो यहुसु घ्याम मुसु बुमुवा थेन्दे रु नोन राङला लडाई छेबरी रङ देन मुस्युला आमेन रङिला जीवन रे परमेश्वर जी प्रशस्त आशिष पिन्छु गए
1: प्रोसाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी कार्यक्रम स्पार्क माइ फेथ
2: टाइम चेक इट्स 7 PM